0: Минутка веб-радио Шри-Ланка на радио Чипльдук.
1: हमने आप ही में आउर दूध
2: हरी हरी हरी गामे आउर दूध से वेने में न मंगा ने लाख से आ
1: हमने भीलू करना था मैं कभी ओस्कार पीटिया
2: यो वे लम्हा एक बार डालने थे मैं पारा आउर दूध से वे करांडे हाथ में हाथ रास्ते आगे ये भी सम्मादा में कुछ करांडो उन्हें ने आपे गामता आउर दूध से वे आज दिन न किया ला नेते फे मैं कर पोस्कार दिया वाने वैडिये में पोस्ट
0: Это была минутка веб-радио Шри-Ланка на радио Чипльдук.